तेरा इन्हें की आख दी का किस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है यही गुरमत है कर किस नाम सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिगड़ लाथे प्रभ सरना प्रत्ये भय संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गावो पढ़ो।

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है बाहे जनादी पकड़ी है सिर दी जय बाहे ना छोटी है।

नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचो विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदियां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे, मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या, गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां, आप सर

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

कहो परपंच कर परधन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले, जेरी पापां दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है, याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पैरी दे, ए दे अमोलक श्वास जो वाहेगुरु ने तेनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया, जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नू भोगांगा, फिर सुख मानांगा, सोचदियां सोचदियां अंत समा आ गया, जदों अंत समा आ गया जमदूता ने आख्या भाई हुन तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना, ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनत कीतिया हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए तन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा तन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास होर दे, आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास उस दे।

गुरु नानक से ठीक बादशाह बख्शिश कर दिया न पाई पही प्राप्त मानछ दे होरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे हैं पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तां परमेश्वर दी भगती कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिज्जत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भाई उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह आ

मैं इन्ना पुन दान करदा हां, मैं इन्ना सिमरन करदा हां। इथों तक थोड़ी जिन्नी गुरु दे दरबार

परादी जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया तिसकी पाओ भगत नहीं सादी। तू जिडियां मेरे ते बख्शां कीतियां ने, जिडियां तू मेरे ते रहमतां कीतियां ने, मैं उन्हां तेरा धन्नवाद नहीं कर सकता। मैं बड़ा ही औगणा दा भरिया देखो शब्द विच

एक निमख नकीनो में फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा विसेरा जिस कर दे विच तेरे संत जन तेरे सेवक जन कथा कीर्तन कर दे ने उस घर वाल नू मैं कदी फेरा भी नहीं मारिया।

एक सच्चा सेवक अपने औगुण गुरु तो कदे भी नहीं लकाउंदा। गुरु नूं दस देंदा है वे सतगुरु मैं एडा गुनाहगार हां, मेरे औगुण तुसी बख्शा देवो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह दरबार सजा होया है ते सामने एक गुरसिख हाथ जोड़ के खलोता है जिसका नाम इतिहास विच भाई बहोड़ू है। की आख रहा है सतगुरु, दुनिया दे सारे सुख मेरे कोल हैं,

मेहनत मजदूरी करने वाले अस दे गरीब सवेर दा प्रशादा शकिया है, पता नहीं शाम दा मिलना है जा नहीं, पर मन बहुत सुखी है क्योंकि किरत धर्म दी है। तू बलवांच लोक करे सब जाने जानी राम, सतगुरु बख्श कर रहे हैं। तू जिन्ना मर्दी लुक के पाप कर लै, वो जानी जान मालक तेनू सब जगह देख लेंदा है। ओदी अखों ओले तू किते भी नहीं हो सकता। सतगुरा ने आख्या गुरसिखा, जे सुख चाहुंदा है मन

करनी ता तेरा मन सुखी होवेगा। सुबह शाम संगत विच बैठिया कर, दसा नौहां दी किरत करिया कर, जिथे धन कतर करके अपने बच्चियां दे मुंह विच पाउंदा है गरीब गुरबे दे मुंह विच भी पाया कर। आज गुरसिख ने

अपना जीवन गुरु दे हुक्म अनुसार बनाया ते थोड़े समय बाद की बख्शिया होया देड़ा घर इनू नरक नजर आउंदा सी। जिस घर दे विच हर वेले लड़ाई झगड़ा आउंदा रहिंदा सी अज ए घर इनू स्वर्ग पिया नजर आउंदा है। जिस घर दे विच बच्चे बोल कबोल मंदे बोल बोलदे सन अज उस घर दे विच वाहेगुरु की आवाज आउंदी है। सतगुरु सोझी दे रहे ने घर दे विच कलेश लड़ाई झगड़ा भी क्यों तेरी किरत नहीं चंगी पापां दे कीते कथे पैसे पापां दी कमाई दा खरीदया होया पदार्थ जदों बच्चियां दे मुख विच पौना है ओ कूड़ दी कमाई खा के बच्चे बोल कबोल बोलदे ने घर नूं नरक बना देंदे ने। पर देखो अज गुरसिख ते बख्शा होईयां धर्म दी किरत कीती दसा नौहां दी सच्ची किरत कीती गरीब गुरबे दे मुंह विच पाया गुरु लई दसबंध कढ़िया ते फिर बच्चियां दे मुंह विच पाया अज इहदा घर स्वर्ग बन गया। वाहेगुरु दी आवाज आ रही है घर दे विच सतगुरां दी बख्शां हो गई सो सतगुरु बख्शिश कर रहे ने। कदी भी अपनी औगुण गुरु तो नहीं छपाउणी तू औगुणा नूं छपा लैंदा है

तू मैनू दुनिया विच भेजिया जाके सिमरन कर जिथे घर परिवार बच्चे पालने ने उथे सिमरन भी करी।

हम ऐसे अपराधी। ऐ सतगुरु देख असी केहो जे अपराध कर दे, देख असी केहो जे औगण कर दे। सास ग्रास भगती करन वाले ब्रह्म ज्ञानी।

गुरु ग्रंथ साहिब अगे बाबा जी इन्नी निम्रता इन्ना गुरु दा सत्कार ते संगत दा सत्कार टोआ पुट के संगत विच बैठ गया।

बाबा जी मैं मुकदमा जितया है जानी जान बाबा जी आखन लगे भी इंज कर सारी संगत नू दस तू केड़ा मुकदमा जितया है ते सत्संगियो इन केड़ा मुकदमा जितया है।

पर आप आए हैं। दुष्ट दमन तू संसार ते जा। कहते ने मेरा मन नहीं करता तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करता किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे न आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आख देन।

रवैये महले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह

भगत अमरीक बारे। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच, अमरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया। ए राजा अमरीक जिन्हां दे पिता दा

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीकन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। ते दुर्वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

दुर्वासा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नूं मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्वासा ऋषि एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करदे ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल की वह बांह वड़ी जिदे विच उन्हें किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल का गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्वासा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण पन्ना जीओ लै, ते ओ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पन्ना जीओ लै, रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उन्हों फिर कौन बचावे। ए दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा, ए मेरे वस दी गल नहीं, तां दुर्वासा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे, हुण मेरे भी वस की गल नहीं। दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया, तां ब्रह्मा जी कहन लगे, तेनूं बचाणा हुण मेरे वस की भी गल नहीं। तां फिर दुर्वासा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल, तां विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारे पास्यों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन, सिख दे सबना समझाया देवतियां ने, अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्वासा तू भगत नूं बुरा कर, तू भगत नूं दुख देना चाहिया, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना बड़ा।

फिर दे सदाया जदों ए दुर्भाषा रिखी भगत अमरीक दी शरण विच आया ता फिर अमरीक ने बेनती की थी ऐ भगवान अपने इस चक्कर नु वापस बुलाओ ते दुर्भाषा नु बख्श दो। अमरीक ने दुर्भाषा रिखी दी सुदर्शन चक्कर तो बंद खलास कराई ता भाई गुरदास जी कहंदे ने भगत वछल जय बिरद रखाया। ओ परमेश्वर भगत वछल है वो अपनी बिरद ही रखिया करता है भाव कि जेड़ा ओदा हो जावे।

0: कलयुग
1: में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना।
0: कलयुग में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दर्जे।